0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
2: चिंता न करें महाराज, मैं अपने वक्षस्थल पे मीठे विष का लेप लगाकर उन सभी बालकों को अपना दूध पिला दूंगी।